0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
0: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।

0: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
0: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: ये खात्मे लाए पाकिस्तान एक पेरो भी है कोशिशों तेज करे छूँ अरब मीडिया मौजूद मसूद के हथबी शक्ल लेने के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत अज तेहरान पहुंची ईरानी क्यादत से मुलाकात कंदी ईद उल उजहा इस्लामाबाद में गाड़ियों के बेदौर दौरान जंगबंदी मुआहदे से सही थे इम्कान है पाकिस्तानी अहम शख्सियत अज दुबारे दौरे दौरान ईरान ए अमरीका विच में हथबी मुआहदे के मसूदे जो पिण ऐलान थी सके तो

अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि घटि वक़्तु आहे, जेसिताईं को माइदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ़ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी। असांखे ईरान खां सही जवाबु हासिलु करणो आहे, हुन लाइ कुझु ॾींहनि जो इंतज़ारु करे सघूं था। हाणे जन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं ईरानी क़ैद सां मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरानी सदर मसूद पख़्शान, बासराना इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अणसिधियूं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तमु नाहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाइकाई चयो आहे त पाकिस्तान जे टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लाॻू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तमु कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेको चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न, पर असांजो हक़ आहे।

हिंदुनि जो रुहानी पेशवा साईं सादराम जो आखिरी रस्मूं रड़की दरबार में अदा कयूं पयूं वञनि। कुझु देरि में संस अग्नि संस्कार कयो वेंदो। साईं जे अक़ीदतमंदनि जो ॾेह तोड़े परॾे मामद सिलसिलो जारी आहे।

गोसपुर ऐं पिरियालो में चोरनि डिणबार ॾिनो। गोसपुर में चोरनि हिंदू वापारी जे घर मां चोरी दौरान वापारी बसंत लाल खे शदीद ज़ख़्मी करे 20 लख रुपया फुर कया विया। पिरियालो में होटल तां लखियल पंहिंजो सामान चोरी। मुतासिर जो सखर पीर जो गोड़ ते धरणो, ट्रैफिक मुअतल।

0: ऐं पिथुर में नारी ऐं नौजवान मोबाइल तौर ते गॾिजी आपघात करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जमील मरी गोट में पढ़ियल नारी जीअं गुली ऐं नौजवान भूरो कुली वण में फाओ खाई आपघात कयो। दादू जो घोट सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मोबाइल तौर ते आपघात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयुम कमराणी फाओ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385569 0300003 8556।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 03200018003।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
10: 03013992836।
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601100।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 5 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठा

पाकिस्तान तकरीबन 20 सालनि खां पोइ समुंड मां तेल ऐं गैस जी ॻोल्हा ॿीहर शुरू करे छॾी। कंपनियुनि सां गॾु प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदे ऐं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी थियण वारो सिलसिलो मुकमल। शुरूआती सणपकारी 8 करोड़ 20 लख, जॾहिं त मजमूई सणपकारी 1 अरब डॉलर ताईं थियण जो इम्कान आहे। इंडस ऐं मकरान ऑफशोर स्पेंसिस में ब्लॉक अलॉट कया पिया। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मरक पारां मुआहिदे तवनाई पॉलिसी तारीख़ी कामयाबी करार ॾेई छॾी। अमरीका ईरान विच में जंग जे खात्मे लाइ पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अरब मीडिया मूजिबि मसूदे खे हतमी शकल ॾियण जे लाइ पाकिस्तान जी अहम शख़्सियत अॼु तेहरान पहुची ईरानी क़ैद सां मुलाक़ात कंदी। ईद उल अज़हा इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर दौरान जंगबंदी मुआहिदे ते सहियूं थियण जो इम्कान आहे। पाकिस्तानी अहम शख़्सियत जी अॼु वारे दौरे बाद ईरान ऐं अमरीका विच में हतमी मुआहिदे जे मसूदे जो ऐलान थी सघे थो।

अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान जे जवाब जो कुझु ॾींहनि ताईं इंतज़ारु कंदासीं। ईरान वटि वक़्तु घटि आहे, जेसिताईं को मुआदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ न ॾींदासीं। नई ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त हूंदी। असांखे ईरान खे सही जवाबु हासिल करणो आहे, उन लाइ कुझु ॾींहं इंतज़ारु करे सघूं था। हाणे जिन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी क़यादत सां अहम मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशान, पासदान इनकलाब जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी कुझु ॾींहं पहिरियां बि ईरान वियो हो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियूं जो सिलसिलो ख़तमु नाहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त पाकिस्तान जे टाकरे सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदियूं फौरी तौर ते ख़तमु कयूं वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेके चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न पर असांजा हक़ आहिनि।

0: सलामती काउंसिल के ट्रंप के धमकिन सामूं खामोश न वेहण घुर्ज। गयल कौमन में ईरानी सफीर जो मुतालबो। अमीर सईद ईरानी ट्रंप ईरान से हमला, ईरान के पत्थर के दौर में धिकण जो सरियाम धमकियों पो डे। ट्रंप ईरान के एटमी साइंसदान तवानाई इक्सादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही समेत ईरानी तहजीब तबाह करण की धमकियों भी दे चुको है। सलामती काउंसिल की ही खामोशी खतरनाक अमल के जन्म दई सके थी। आलमी सतह के तेल जगह में घटताई बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। हैंडेड इंडेक्स में 26,000 पॉइंट्स में वाद। आलमी मंडी में तेल जो फी बैरल अघ $100 का भी घटी पो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैंडेड इंडेक्स 1,67,000।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायतें मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बधन मर्दन औरतुन में वजन जो न बधन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लिए 0301-9196-851।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे।
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

उत्तर वजीरिस्तान के इलाके स्पनबाब में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी पाया। मारजी पल दहशतगर्दन में घुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल। सिक्योरिटी जरन मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब के सिर की कीमत 30 लख रुपया मुकर्र हुई। मारजी पल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सिस आयश के हमलन जो मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्द उमर बुरयाल मस्जिद 12 जमीन अंदर बैंकर ठहण से गड बारूदी सुरंगों भी विछाई हुई। सदर वजीर आजम वफाकी घर वजीर बेन जो पाक चीन सफारती लागापत के 75 साल मुकम्मल थे चीनी हुकूमत आवाम के मुबारकों। सदर आसिफ जरदारी चो तो पाक चीन लागापा गडल एतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार ए मजबूत दोस्त जो रोशन मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम से हकीकी ए दिली मोहब्बत कंदो आहे। मौसन नकवी चो तो पाक चीन दोस्ती मिसाली एतमाद मोहब्बत ते बदल सहकार की मजबूत अकास आहे। ईरान जंग के खात्मे लाए अमरीका जो नयू तजवीजों मिलने तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बाकाई चवा तो अमरीका तजवीज जायजो वी जवाब दिनों वो। ईरानी सदर मसूद पेशकान चवा तो डाढ़ जरिए ईरान के झुकाए नो सकते जंग के खात्मे लाए वेझो एतराम जरूरी है।

पाकिस्तान तकरीबन 20 सालनि खां पोइ समुंड मां तेल ऐं गैस जी ॻोल्हा ॿीहर शुरू करे छॾी। कंपनियुनि सां गॾु प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदे ऐं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी थियण वारो सिलसिलो मुकमल। शुरूआती सड़पकारी 8 करोड़ 20 लख, जॾहिं त मजमूई सड़पकारी या 1 अरब डॉलर ताईं थियण जो इम्कान आहे। इंडस ऐं मकरान ऑफ शोर पेंसिल में ब्लॉक अलॉट कया विया आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक पारां मुआहिदो तवनाई पॉलिसी जी तारीख़ी कामयाबी करारु।

पको में पसंद पढ़ने तय इंसानियत के लजंदड़ वाक्यो बस सगा भायर कतल हथियारबंदन फायरिंग करे मुजम्मल अली मेयो नदीम अली मेयो के कतल कर छो। पुलिस मूजिब नौजवान काशिफ अली मेयो मुगेरी बरादरी औरत से लाहौर की कोर्ट में पसंद पढ़ो किया जैं दिन में छिकताण हलंदड़ हुई। हिंदुन जो रूहानी पेशवा रड़की दरबार में अदा क्यों पे वन कुछ देर में इन अगे संस्कार किया वो साई साधराम के अकीदत मंद डेह तोड़े परडे में आमद जो सिलसिलो भी जारी है। साई साधराम सिंगापुर के अस्पताल में इलाज दौरान ध्यानत करे पो हो।

इथोरो में नारी ऐं नौजवान परणो न थियण सां मुबैना तौर ते गॾिजी आपकात करे छॾियो। पुलिस चयो आहे त जमील बरी ॻोठ में परणियल नारी जीअं कोली ऐं नौजवान भूरो कोली वण में फाओ खां इहा आपकात कयो। नारी जी शादी थियल हुई। वधीक जांच करियूं पिया। दादू जे ॻोठ सुमर खान कमराणी में नौजवान मुबैना तौर ते आपकात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयूम कमराणी फाओ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो, कारण मालूम न थियो।

0: गोसपुर में प्रयालो में चोरन ऋण बारे ॾिनो। गोसपुर में चोरन हिंदू व्यापारी के घर में चोरी दौरान व्यापारी बसंत लाल के शदीद जख्मी करे 20 लख फुर करे फरार थी पिया। प्रयालो में होटल तां लखे रुपए जो सामान चोरी। मुतासिरन जो सखर पीर जो गोठ धरनो। चोरी वापस करण जो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
7: I wish we could spend more time there.
8: I know, I have to go.
7: Why are you always in rush?
8: I'll see you tomorrow, okay?

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

उत्तर वज़ीरिस्तान के इलाके सपनवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार खारजी मां दहशतगर्द मारजी व्या मारजी वाले दहशतगर्दन में घुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल सिक्योरिटी ज़रन मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब के सिर की कीमत 30 लख रुपया मुकर्रर हुई मारजी वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहर के हमलों को मास्टर माइंड हो खारजी दहशतगर्दन उमर बोबाली मस्जिद पारा जमीन के बैंकर ठहण से गुड बारूदी सुरंगू भी बिछाय हुई। पाकिस्तान पारा इसराइली जारियत जो शिकार बनल गजा वासन लाए खाद खुराक खड़ी में इंसानी हकन के कारकुन इसराइल के बदसलूकी वाले वाक्य की सख्त लफ्जन में मजम्मत तर्जमान है तो ग्लोबल समूद पेट्रोला के रोकण और कारकुन से बदसलूकी आलमी कानून खिलाफ है। काफिले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरन इंसानी हकन के कारकुन के आजाद करने मुतालबो स्पेन और इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत स्पेन के वजीर आजम है त फिलोटोला के कारकुन की गाल कबूल जोगी ना पंज शहर से बदसलूकी कें भी सूरत में कबूल न कई वी इटली में इसराइली सफीर की तलबी वाक्य की वजाहत तलब कई वही है।

ईरान जंग के खात्मे लाए अमरीका जो नयू तजवीजू मिलने की तस्दीक कर छी। ईरानी पार्टी वजारत के तर्जमान इस्माइल बाकाई चवाए तो अमरीकी तजवीजों को जायजो वी जवाब दिनों वो। ईरानी सदर मसूद पशियान चवाए तो डाट जरिए ईरान के झुकाय नो सकजे जंग के खात्मे लाए एक बे जो एतराम जरूरी है।

सिंध काबीना कराची के पीआरटी मनसूबे लाट जो कम तेज करण की मंजूरी दी छी कम में देर से अगूणो ठीको रद्द एफ डब्ल्यू के कम देने की मंजूरी डी वही वे वजीर यूनिवर्सिटी रोड जो कम नवे दिन अंदर मुकम्मल करण की हिदायत नाकस कारगर्दगी या नाअहलियत उहदे तां हटाइण जो तरीकेकार भी मंजूर सिंध काबीना पारां वफाक खां मुंतकिल थियल तिबी इदारनि जे इंतज़ाम लाइ नओं कानूनी फ्रेमवर्क मंजूर कयो वियो।

सिंध हाई कोर्ट कराची एस पी एस सी जा नतीजा मुअतल थियण वारो फैसलो 9 जून ताईं बरकरार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ारनि उमेदवारनि ऐं कामयाब करार ॾिनल 71 उमेदवारनि खे केस में धुर बणाइण जो हुकम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेश थी अदालत खे रिकॉर्ड सील करण बाबति आगाही ॾिनी। अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते एस पी एस सी जे साल 2024 रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकम ॾिनो हो।

सदर वजीर आजम वफाकी घरू वजीर ए बेन जो पाक चीन सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थन ते चीनी हुकूमत ए आवाम के मुबारकूं। सदर आसिफ जरदारी चो त पाक चीन लागापा गडियल एतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार ए मजबूत दोस्ती जो रोशन मिसाल आहिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो त पाकिस्तानी आवाम चीनी आवाम से हकीकी ए दिली मोहब्बत कंदो आहे। मासिन नकवी चो त पाक चीन दोस्ती मिसाली एतमाद ए मोहब्बत ते बदल सहकार जी मजबूत अकास आहे। पको में पसंद परणो कंदड़ नौजवान बबाहिर कतल हथियार बंदन मुजम्मल मेयो ए नदीम अली मेयो के कतल कयो। पुलिस मूजिब नौजवान काशिफ अली मेयो मुगेरी बिरादरी की औरत से लाहौर की कोर्ट में पसंद जो परणो कयो हो जैं तां धुरन में चिकताण हलंदड़ हुई।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जनाब, सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से, जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे, उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है, कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में जो कि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज आप मुझे ये बताइए जरा, क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना चेहरा रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? ये आज आप मुझे बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे। ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं। समझ रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब, जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक हो गया? तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। शेयर करेंगे जब भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाईजान मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो जितनी ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए खूबसूरती के बारे में कि भाई आपको खूबसूरती कैसे हासिल हो सकती है, तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बताया करें लोगों को कि भाई आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, खूबसूरत कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाँ जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने हैं, क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है ना वो ये भी पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें तो उसमें आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आ जाती है, और उसके बाद आप लोगों के लिए जो व्हाइट एज की लवली क्रीम आ जाती है। अब ये दो क्रीमें हैं, एक नाइट क्रीम है और एक ऐसा समझ लें कि डे क्रीम है। यानी कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो वो आप रात के टाइम लगाएंगे, बाकी अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाते हैं तो वो आप पूरा दिन लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगाइए, ठीक है, साथ में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो भाई उन लोगों के लिए जो कि अच्छी वाली फेयरनेस क्रीम की तलाश में, और फेयरनेस क्रीम आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद होगी, जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके साथ साथ व्हाइट एज का आप लोगों को साबुन मिल रहा है, और उसके साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार है, और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ना हाँ जी डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो

0: ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएंगे. और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए. जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर, यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं, यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रोज देख रहे होते हैं. इस सवाल का जवाब दीजिए. यहाँ पर हुआ जाता है टाइम के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए. ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक. और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemi.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक

0: की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

आदिल कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होती तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा स्मार्ट किशोर भाई कहते हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है स्मार्टू भाई, आपको वेलकम करते हैं। और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगा कर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़ कर चली जाए। बात में दम था वैसे। हजार खंड जो भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम कहते हैं, छाला लाजवाब वाइटिश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा। अच्छा एस एन अरबानी वालेकुम असलाम, छाला खुशायो। हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम, सुबह और शाम को डॉक्टर लिखी दिनो तो चावल। एक दफो सुबह जो दिसो, एक दफो शाम जो दिसो। ओके सो मां जमा का सवाल पूछो आए तो तमा डेली पांजो मु जको आईने में केतरा चक्कर दिसंदा है, छा तमा के ने चीज जो अंदाजो आए बुधायो मुखे। और किशोर भाई कहते के टॉपिक में सुबह ऑफिस जाते वक्त देखता हूं फिर वापस आकर देखता हूं, अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो जाता है। अच्छा यानी तवाईडा सोना आयो ता पान के घड़ी घड़ी दिसंदा है। दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी कैसी हैं। और उदास लड़की कहती टॉपिक में तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है ना नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए, जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है।

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो न त हिकिड़ो हिकिड़ो ड्रॉ विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे सम्झो था तो मुझे बताओ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो। दर्द दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता। बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ माजुक दीदी टॉपिक को फॉलो किया है, कहाँ फॉलो किया है, यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे। ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते हैं। इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई जान को। और उसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूँ तब चेहरा देखता हूँ, बस ना निकलो तब बस, ये भी सही है।

असां ही गानो ने माण्हुनि खे डेडिकेट जेके वाइट एस जा प्रोडक्ट लॻाइनि पिया सोणा थी विया आहिनि अलाह सदिको ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ मेरी नाइस इदरा शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुख मरसद माचुकदी नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारिया मरसद माचुकदी वालेकुम अस्सलाम टंडो अलह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

आज क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो या जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए, जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोमन तैयब थे अभी बोला थे तमाम जो शो वेरी नाइस आहे, मुख्य गानों बुधरा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर, बिल्कुल यो गाना जैसा जरूर बुधनासी अमा बुधाया थी तमा पांजो मुबारक जको केतरा दफा जको न डी में दिसंदी वकास कहते फ्रॉम विलेज अली। अच्छा शेदाद कोर से, सही है, आपको हमारे शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। मिरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम, कहते बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को वाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है। वाह साई वाह, ले तवान दोस्त जी अफा देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह, सलामती शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाईजान को, वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला, नहीं बल्कि शुए महर हैं बाजी, कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता। अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए, इशारा होगा कहाँ गया वैसे। चले यहाँ ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं, ऐसा भी मत किया करें। चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें, और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा, हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: बतूना वक्त के साथ ज्यादा उठिए कम नहीं।
1: चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है।
0: अगर सच्ची मोहब्बत हो ना वक्त के साथ ज्यादा होती है कम नहीं।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी से बताइए। चाचा खाले जो हमारे साथ जी पैनल पर, वालेकुम अस्सलाम चाचा, की आयो खुश आयो, खैर सब खुश है तवा घर में। और चाचा खाले तुम्हारा गाने जी फरमाइश गई, थोड़ो जो गाना तुम्हारा मुश्किल नहीं डिफिकल्ट बुधायो आए, अगर मिली हो तो हलाइंदम, न मिलो तो वरी सुबाने को बो गानों बुधी वटंदे सही हाँ सुबाने वैसे जुमो आ मुख्य लगे थे हाँ बाकी मैं सारी चीजें दुनिया की भूल सकती लेकिन अपनी छुट्टी नहीं भूल सकती मेरी जान है बुलाया। मुझे निंद्र में भी पानी छुट्टी याद होती है। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए मौजूद है फ्रॉम न्यू जतोई सिद्रा, मुस्कान आप कैसी हैं, मुझे मास्टर मंजूर का कोई भी गाना सुना दीजिए। ओके जी डन हो गया। एडम कहती हूँ मुझे जानी जब आपकी भाई मेरी भांजियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी, वो अकेले कैसे आ सकती हैं, बड़ी तो थी वही पर मतलब नंडड़ी रह जी हुई है तू दिमाग बारन बार होते। वफा अब्दुल गफार खास के लिए तवां जो मोहब्बत हुआ भा, सजाद अली खास के लिए तवां सगड़ आहन, ऐं दिलबर अली खास के लिए भी आहन, उन्हें जी शादी आहे, उन्हें जलाए तां फायजा अली जो गानो बुधन चाहियो था। चलो ठीक है, वैसे फायजा जकड़ो मु गानो लगायो पर शादी वारे गाने जी फरमाइश अच्छी पई तो भला शादी वारो गानो हणऊं था लिस्ट में जे में सभी के राजी कयूं था, ये फायजा जकड़ो हुयो ना शादी वारो गानो।

साईं वाह जो गानो हलायो आ उन का अलावा अगर तमा से सगड मौजूद आए किथे वाइट एज जा प्रोडक्ट नथा मिलन किथे डी स्किन जा प्रोडक्ट नथा मिलन मुखे जरूर लाजमी बुधाइंदा करे जी असा के खबर पई त बाबा तमा वठो था नथा वठो तमा में हलचल आहे या को न सिर्फ चुप करे सुम्या पयो पांजे घरन में अच्छा युसरा असांगे बुधी पर युसरा सिर्फ खाली पांजो नालो लिखी करे असांगे सेंड कंदी आ सो युसरा तवा जो मोहब्बत वान बाबा ता पांजो जन जो सबूत दींदा आयो थैंक यू सो मच मकसूद मल्हा केते मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूं हेलो सिद्रा मुस्कान कराची गया था शॉपिंग करनी थी गुड बैकग्राउंड बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला थेबो केते सॉन्ग बुधराए जो हाजिर हाजिर भाज ता जो गानो पकवा ता माने सीट ते वेई रहो एरम केते आप ही प्लीज प्ले हां यो गानो बेलाइंदा सी मकसूद केते सिद्रा मुझे भी तो गाना सुनाओ मास्टर मंजूर का मास्टर मंजूर का गाना भी लिस्ट में मौजूद है आप जरूर सुनेंगे जी और कहते मेहरापुर से आप हमारे साथ हैं ओके जी सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत वाला शुक्रिया एक ही मैसेज को बहुत मतलब आपने शेयर कर दिया है थैंक यू जी फकीर राहिब माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण बेरिया सिटी कोट बहादुर मौला इस्लाम मदद भाऊ के चौथा भली करे आया और एरम चाहती जी आप ही जवाब है याद नहीं है जब मैं आईने में अपने आप को देखकर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर प्यार आता है वाह वाह ये अलग लेवल की बंदी है बाबा अच्छा प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमदाबाद से वालेकुम अस्सलाम जी तेरे स्वीट शो कल वाला हाँ जी बहुत शुक्रिया कल वाला शो आपको पसंद आया थैंक यू जी थैंक यू और ये हमारे साथ हैं तेरे सामने मेरा हाल तुम्हें क्या सुनाऊं ए दिलरुबा वालेकुम अस्सलाम बाजी क्या हाल है आपका शो अच्छा चल रहा है तमाम सुनने वालों को सलाम के बाद शायद आपका मैसेज जो है ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है पैनल पर जब भी मैसेज करें तो उसकी टाइपिंग जो है ना वो उर्दू वाली टाइपिंग मत लिखा करें क्योंकि ऐसे जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है जब मैसेज मिसिंग पार्ट आ जाता है लफ्ज इधर के उधर हो जाते हैं तो अंग्रेजी वाली जो टाइपिंग ना वो लिखा करें और कश्यप हमारे साथ कहती आप बस क्या आपसे बहुत नाराज है अच्छा मुझसे क्यों नाराज है वैसे मैं तो मशरूम सा बच्चा हूँ मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ

त कम कोन हलंदो न ॾिसो कंहिंखे कंहिंखे साड़ थो थिए अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ माण्हू तव्हां खां सड़ंदव अला वैसे ई सड़ंदा आहिनि पोइ कुझु ज़्यादा सड़ंदा सम्झो था ओके सो हज़ार भाई कहते ओके मेरा काम मेरे काम का टाइम हो गया चले भाई काम भी ज़रूरी है वाकई काम कीजिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे इतना टाइम और ये आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा वाला शुक्रिया है टाइम भी बचाता है ज़रा हम भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाने लगे हैं तो आप बस यही मौजूद रहिएगा सुनते रहिए इन्जॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूँ जाकर यूँ वापस आ रही हूँ तो आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो जो कि आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

0: साइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: तामीन व नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहराब और मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों को ये चीज तो कॉमन मिलेगी कि आप लोगों की खूबसूरती के ख्याल रखने के लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो जनाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, वहां से मालूमात लेते हैं, नाम लेकर तलब करते हैं, आपको नहीं मिल रहे तो फिर आपको जो नंबर बताते हैं उस नंबर के ऊपर राबता कर लिया करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो नंबर है 03157990595। नंबर डायल करते रहिए ताकि आपके सिटी में भी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाए बिल्कुल जी ये सारे प्रोडक्ट्स, ताकि आप आराम से जाकर परचेज कर सकें। तो जल्दी जल्दी जाइए, अवेलेबल कराइए और परचेज करते जाइए। और साथ साथ भाई ईद के दिन भी करीब आते जा रहे हैं, ये चीज ये बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जैसे ईद करीब आती है तो आप लोगों के अंदर ये बात भी है कि भाई ईद ये वाली ईद होती है ना, खास करके गर्मियों में होती है, बहुत ज्यादा वाली गर्मी होती है, ऊपर से कुर्बानी कर रहे हैं, रश होता है, मेहमान आते हैं, तो उन सारी सूरत हाल में देखा जाए तो ऐसा होता है कि आपकी स्किन जो होती है ना वो खराब हो जाती है। तो खाना भी बहुत ज्यादा खाते लोग तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए और लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश फील कराए रखें, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। और व्हाइट एज की लवली क्रीम तो इस्तेमाल करना आप जो है ना ये मत भूलिएगा, व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लाजमी परचेज कीजिए और आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और हमेशा आप खूबसूरत रहेंगे। तो जरूर ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें ताकि आपकी खूबसूरती भी आपसे बोले कि हाँ जी भाई अब सब ठीक है।

ते गानो एतरो खूबसूरत आना बुधी करे मतलब ये डाडू भलो महसूस थिंदो आहे आई गानो मुखे डेडिकेट हुयो और ये आपके मैसेजेस हैं जिनको हम जाहिर सी बातें पढ़ेंगे। अच्छा पैनल की जाने बातें हैं तो एक मिनट, मैंने कहा था कि आपके मैसेजेस पढ़े। अच्छा हाँ, ये हमारे साथ फिरदोस भाई हैं और फिरदोस भाई कहते हैं, अच्छा क्या मतलब आपने ये शायरी लिखी है। अच्छा कहते हैं, तुमने ऐसा किया मेरे जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से, मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से। वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस।

काफी बड़े दिनों के बाद हमने ये गाना सुना है, इसी के साथ साथ ये गाना बस उनको डेडिकेट करते हैं जिनको ये अच्छा लगेगा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बता दिया करें, ठीक है, शर्माया मत करें। और चाचा खालिद कहते हैं, भला पो ही वारो गानो हलायो, माँ भी कह दो सिदरा चलो आया तुझे शो में वरी वरी आया छो भला मना है मुझे शो में अचानक शो आ ता नहीं ना तो बाकी

जाए ओके हो डेडिकेट, ये जरा राज की बात है, वो राज में रखी जाएगी. अच्छा ये सकलेन अब्बास हमारे साथ है. सकलेन अब्बास आपको वेलकम इन खुशामद.

लोगों को कंफ्यूज इस तरह बिल्कुल इस तरह किया जाता है. अच्छा संजय जी पाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो संजय भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हाने मुझे दिल जी को थोड़ी राजी थी या ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आए तो वाला सदरा के लाई लाई कॉमेंट्स की आदत विजी चढ़ी था ना एनर्जी के ये बिगाड़ो भी तो ता है ना जी मच्छी फट के मच्छरन जे जा रन में मुझे दिल. अच्छा दर्दी दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका. नवाजिश जी नवाजिश. अच्छा ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून. माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? मैं सफा भलिया यार. और कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को. और कहती हैं कि टॉपिक बहुत मर्तबा देखती हूँ. बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जे को गानो ना ही ऐसा फजीला सिंधी जे तरफा उन जे हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था. ठीक है.

आइए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, तो थोड़ा लगता है, समझ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए। और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595। अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595।

अच्छा एसन वैसे तव्हां चओ सही था पर तव्हां खे बि जेको आहे न जुमेवार ॾींहुं मोकल हूंदो आहे न मुंहिंजी मोकल त माना तव्हांजी बि मोकल सभिनी जी मोकल सभु मज़े करेंगे अच्छा ये नूरे सिंह तुनियो भाई हमारे साथ मौजूद हैं क्या बात है एंजॉय करें एंजॉय करें वासु भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो वासु भाई प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम बहावल नगर से हमारा शो ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू जी वेलकम करते हैं आपको

नूरे मो। अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई भाई। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ। वैसे माई चवंदी माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे। क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है, तो ये है। हाँ, लेकिन ईद से पहले आप लोगों ने व्हाइट ईस्ट की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना, अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे, तो बस आप व्हाइट ईस्ट की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह, चिलके तो चिलके थी, अच्छा लगायो तुम। अच्छा स्मार्टो गोपांग कहते हैं कि सिद्रा मुझे नहीं भी ऐसे, इसीलिए कहते ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। मानो जी गालन दे न लगंदा कयो, पो ईअं ई तव्हां हमेशा बेवकूफ थींदा रहंदा ज़िंदगी में। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे, हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में। अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सो हाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। चाचू चए थो तव्हां लंच कयो, असांखे फॉर्चूनर घुर्जे। रास की बात है वैसे असांखे भी।

अच्छा दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही ले शायद इतनी मरतबा।

वैसे वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था, तो बस छुट्टी दे दे, मेरे को माफ कर दो. अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल, नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम में. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा. और आप जो है ना वो वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा. वैसे वाइट एज के प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये भी आप मालूम जरूर जो है ना वो लिया करें, ताकि आपको ये पता चले कि हम कहाँ से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं. तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595. ठीक है, वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा आज, पता नहीं कि आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू. तो यस यस मैं जा रहा हूँ. सो भाई मुकलानी नाइस, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

ईरान खे मुआहिदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾींदासीं, तेहरान जे जवाब जो को कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी मक़ूल आहिनि ऐं तेहरान डील लाइ बेताब आहे। मुआहिदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ईरान जंग जे खात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तसदीक करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे, जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे। पाकिस्तान पारां इसराइली जारत जो शिकार बणियल गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जे बदसलूकी वारे वाक़िए जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। तर्जुमान चयो आहे त ग्लोबल समूद फिल्टोला खे रोकणु ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे कारकुननि खे आज़ादु करण जो मुतालबो। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फिल्टोला जे कारकुननि जे तज़लील क़बूलण जोगी नाहे, पंहिंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। इटली में इसराइली सफ़ीर जी तरबी ऐं वाक़िए ते वज़ाहत तलब कई वई। सिंध काबीना कराची जे BRT मनसूबे लाट 2 जो कम तेज़ीअ सां मंज़ूरु ॾेई छॾी आहे। कम में देरि ते अॻूणो ठीको रद। FW खे कम ॾियण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर जे यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 ॾींहनि अंदरि मुकमल करण जी हिदायत। नाक़स कारदगी या नाअहली ते उहिदे तां हटाइण जो तरीक़ेकार बि मंज़ूरु। सिंध काबीना पारां वफ़ाक़ खां मुंतक़िल थियल तिबी इदारनि जे इंतिज़ाम लाइ नओं क़ानून फ्रेमवर्क मंज़ूरु कयो वियो। सिंधा कोर्ट कराची SPS जा नतीजा मुअतल करण वारो फ़ैसिलो 9 जून ताईं बरक़रार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ार उमेदवारनि ऐं कामयाब करार ॾिनल 71 उमेदवारनि खे केस में दुर्बाइण जो हुकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर पेश थी अदालत खे रिकॉर्ड सील करण बाबति आगाही ॾिनी। अदालत गुज़िरियल ॿुधणी ते SPSC जे साल 2024 जी रिकॉर्ड खे सील करण जो हुकुम ॾिनो हो।

उत्तर वजीरस्तान के इलाके सपन वाम में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी व्या मारजी वाल दहशतगर्दन में घुर्बल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब शामिल सिक्योरिटी जरिन मूजिब खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब की सिर की कीमत 30 लाख रुपया मुकरर कई वही हुई। मारजी वाल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरों के हमलों जो मास्टर माइंड हो। खारजी दहशतगर्द उमर बोबाली मस्जिद बारह जमीन अंदर बैंकर ठाने से गड बारूदी सुरंगू भी विछाई हुई।

0: यकीन कोन। अनमोल और पिंकी के गिरफ्तार साथी जो बो बे केस में रिमांड वी छो। कराची के अदालत गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद सुमेर के बिन केसिस में पुलिस के जांच की इजाजत दई छी। पुलिस मूजिब जवाबदार मोहम्मद सुमेर मोटरसाइकिल जरिए मंशात सप्लाई कह हो, मिलंद रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल कह हो। पको में पसंद पड़ो कदर नौजवान जब भायर कतल। हथियारबंदन मुजम्मल मियो आ नदीम अली मियो के कतल कर। पुलिस मूजिब मकतूल नौजवान के भाव काशिफ अली मियो मुगेरी प्रादी की औरत से लाहौर की कोर्ट में पसंद जो परणो कह हो, जैत धुरन में चिकताण लंदड़ हुई। बिन जड़न के कतल बाद इलाके में खौफ पकड़ियल। हिंदुन के रूहानी पेशवा साईं सादराम जो आखिरी रस्मू रड़की में अदा कई व्यू। साईं सादराम की आखिरी रस्म में मुल्क के कुन कुर्स का हिंदू बरादरी की रेड़की आमद। अकीदतमंदन आलन अखियन से साईं सादराम के अग्नि हवाले कयो। साईं सादराम जी विछोड़े ते डेरकी और बेन शहर में सोग बरकरार। सिंध अंदर मुबैना आबकात वारन वाकियन में रिकॉर्ड वाद थरपारकर सरे फहरिस्त। चार औरतन समेत छह जणन मुबैना तौर से आबकात जिंदगी जो आबकात कर जिंदगी जो अंत आंदो। इस्लामकोट भरसा औरत मुबैना तौर से पंजी न्याणी समेत कुओं में टपो डे आबकात कयो। मसमात आशका जाल आशका रस अठन वरन की धी फायजा जो लाश कुओं में मिलो। चलियार वेझो घोट हरू की वान में पंद्रह दिन अग शादी कदर नारी मुबैना तौर से आबकात कयो। पिथोरो में शादीशुदा नारी नौजवान परणो न थियण ता मुबैना तौर से गड़ी आबकात कयो। पुलिस मूजिब पंडियल नारी जिया कोली और नौजवान भूरो कोली गड़ी वण में फाव खाई जिंदगी जो अंत आंदो। दादू के घोट सूमर खान कंबराणी में भी नौजवान मुबैना तौर से आबकात कर छो। पीटीसीएल मुलाजम पंजवी साल कयूम कंबराणी फाव खाई जिंदगी जो अंत आंदो। कारण मालूम न थो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पारा सिंध फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट जो मसूदो काबीना आडो पेश करण जो हुक्म। माहौलियाती ग्रीन पॉलिसी की भंजकड़ी करण खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अदालत चयो तो बेलन ए माहौलियात के नुकसान पहुंचाने खिलाफ कानून तहत सख्त कार्रवाई की वे। सिंध हाई कोर्ट पारा चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी कानून के नए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-03-00-33-8569

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-5-6-9।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो के 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को

0: बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सुबह की

0: मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा।
7: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर, राबते जे लाइ 0320-1800-003।
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 0301-386-5453।

0: खूबसूरतीअ जो असल सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हन सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने।

0: आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल शहीदन के वारसन के गाजन के फौजी एजाजन सा नवाजियो। फील्ड मार्शल चयो
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूं। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वते मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाए 0320180003।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे के ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई

0: अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 शाम 5 बजे तक मरीज।

गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

0: खे क़त्लु कयो। पुलिस मूजिबि मक़तूल नौजवाननि जे भाउ काशिफ़ मयो मोगरी बिरादरी जी औरत सां लाहौर जी कोर्ट में पसंदि जो पणो कयो हो, जंहिं तां धुरनि में छिकताण हलंदड़ हुई। ॿिनि ॼणनि जे क़त्ल बाद इलाइक़े में ख़ौफ़ हो। सिंध अंदरि मुबैना आबगात वारनि वाक़नि में रिकॉर्ड वाद थरपार कर सैर फ़रस्त चार औरतुनि समेत छह ॼणनि मुबैना तौरु आबगात करे ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। इस्लाम कोट वेझो औरत मुबैना तौरु पंहिंजी नियाणी समेत खूह में टपो ॾेई आबगात कयो। मसमात आशिका ऐं संदसि 8 वारनि जी धीउ फ़ाइज़ा जो लाश खूह मां मिलियो। चेलाल भरसां ॻोठु हरू जे वांड में 15 ॾींहं अॻु शादी कंदड़ नारी मुबैना तौरु आबगात कयो। पिथरो में बि शादी शुदा नारी ऐं नौजवान परणो न थियण तां मुबैना तौरु गॾिजी आबगात करे छॾियो। पुलिस मूजिबि पढ़ियल नारी जिया कोहली ऐं नौजवान भूरो कोहली गॾिजी वण में फाओ खाई ज़िंदगी जो अंतांदो आहे। दादू जे ॻोठु सूमर कमराणी में बि नौजवान मुबैना तौरु आबगात करे छॾियो। PTCL मुलाज़िम 25 वरनि जे कयूम कमराणी फाओ खाई ज़िंदगी जो अंतांदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 03201800003।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर, असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ 2-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03014-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 03016-1623-793।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
6: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000

0: भट ऐं राणीपुर जा तकरीबन गंबट में बि वेंदा आहिनि, साॻो वरी राणीपुर में बि वेंदा आहिनि।
1: हुनजे
0: बावजूद जेको आहे उतां वारा दवाऊं वठी वठी हुते माण्हू थकिजी पवनि था, पोइ वरी हिते था अचनि पिया डॉक्टर साहिब वटि जी इलाज कराइनि था पिया। इन मां अंदाज़ो लॻायो, हाणे तव्हां ओॾे वेंदो पोइ तव्हांखे सूर कीअं छॾींदो? अंगारे ते रुगो डॉक्टर साहिब कोन्हे को, बाक़ी हफ़्ते जा सभई ॾींहं मौजूदु आहे। सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में। ठीकु आहे भाउ मुंहिंजा, वधीक एफएम ॿुधो डॉक्टर साहिब खे ॿुधाईंदो। जी सर डॉक्टर साहिब,
2: जैसे अलहमदिल्ला अलाह ताला जी महिरबानी सां जीअं असां पंहिंजे प्रोग्राम जे आगाज़ में पंहिंजो प्रोमो पेश कंदा आहियूं, त हर बीमारी जे हवाले सां, चाहे चमड़ी जी बीमारी आहे, चाहे कननि जी बीमारी आहे, वारनि जी बीमारी आहे, स्किन जी मसइलो आहे, जोड़नि जो मसइलो आहे, इस्थमा जी तकलीफ़ आहे, मर्दाना ज़नाना अमराज़ आहिनि, या बे औलादी जो मसइलो आहे, या नज़र जी कमज़ोरी आहे, कननि जो प्रॉब्लम आहे, ॾंदनि जो प्रॉब्लम आहे, या चाहे कुनरग जो सूरु आहे, या कंहिंखे पिते जी पथरी आहे, या कंहिंखे गुर्दे जी पथरी आहे, या कंहिंखे बवासीर आहे, या कंहिंखे प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसइलो आहे, या कंहिंखे हर्निया जो मसइलो आहे, उन्हनि जो अलहमदिल्ला शाफ़ी इलाज जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते मौजूदु आहे, जंहिंमें असां होम्योपैथिक जी ई प्योरली होम्योपैथिक दवा, जंहिंमें ख़ासि करे असां मर्ज़ जे मुताबिक़ जर्मनी जी दवा ॾींदा आहियूं, जंहिंसां अलहमदिल्ला पेशेंट बिल्कुलु सिहतयाब शिफ़ायाब थियो वञे थो कुझु अरसे में। यानी कुझु अरसे जो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे, ज़ाहिरिया जिते पेशेंट जो ऑपरेशन थिए उते ज़ाहिरिया उन केस में 3 महीना 4 महीना दवा ज़रूरु रहंदी आहे, ऐं उहो पेशेंट अलहमदिल्ला ठीकु थी वेंदो आहे। पर जेको पेशेंट ज़ाहिरिया 8 साल 10 सालनि खां कंहिं बीमारी में मुबतला हुजे, ऐं उहो जेकॾहिं 2 महीननि या 3 महीननि में ठीकु थी वञे, त हीअ दवा महांगी न आहे, हीअ दवा आसान आहे। ऐं मां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं बि इहो ई मैसेज कंदुसि त असांजी होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। होम्योपैथिक दवा या पाकिस्तान में छा पर दुनिया में जेको असां हिनजो इलाज मशहूरु आहे, ऐं असां वटि तमामु कामयाबु इलाज, छो जो पहिरियां हिन जो एतिरो अवेयरनेस हिते असांजे इलाइक़े में न हूंदी, पंजाब साइड या कराची हैदराबाद वारनि शहरनि में, लेकिन हिन वक़्तु
0: तमामु घणी जेको आहे सो माना होम्योपैथिक मशहूरु थी चुकी आहे, छो जो अंग्रेज़ी दवा खां लाइलाज थी करे माण्हू अचनि था, उनजो होम्योपैथिक में इलाज मौजूदु आहे।
2: होम्योपैथिक में इलाज बग़ैर कंहिं सुईअ जे, बग़ैर कंहिं थैलीअ जे, बग़ैर कंहिं चीर फाड़ जे, बग़ैर कंहिं सर्जरी जे, ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे, हिकिड़ी दवा साफ़ शफ़ाफ़ अव्हांखे बग़ैर कंहिं नुक़सान जे मिली वञे, त अलहमदिल्ला उहो इलाज तमामु बहितरु इलाज आहे। वॾी महिरबानी।
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: साईं, मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए?
3: सर मां अंतर खोखर थो ॻाल्हायां, कटनी
0: वारा। जी दादा, छा पुछंदा डॉक्टर साहिबु?
3: सर राति जो बुखार थो अची वञे ॾाढो, इलाही टाइम थी वियो आहे।
0: छा थियो?
3: बुखार थो अची वञे राति
0: जो। अच्छा, राति जो बुखार थो अची वञे, पोइ डॉक्टर साहिब खां इलाज वठो, इनशाला जान छुटी वेंदी। तव्हांखे बुखार हॾनि में बीठो ई बीठो आहे, छॾे ई नथो, जेको अंदरि में बुखार बीठो हूंदो, ॾींहं जो कुझु झोको थींदो हूंदो, वरी राति जो ज़्यादा थींदो हूंदो, ईअं ई थिए थो। ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु खे ॿुधाईंदो, न त रूबरू ॾेखारे वञो, डॉक्टर साहिबु इलाज कंदो, इनशाला जान छुटी वेंदी। जी सर,
2: हा जी बिल्कुलु आहे, देखे चवंदासीं रूबरू ॾेखारे वञनि, मलेरिया पंहिंजी टेस्ट कराइनि, ऐं पोइ रूबरू ॾेखारे वञनि, वधीक बहितरु रहंदो।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि चीज़ मेहरापुर एफ एम 94 जो, आवाज़ तव्हांजे समाज ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिब सिंह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोरडी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम।
2: ज़ैतून जो तेल, ओलिव ऑयल जेके असां चवंदा, तमामु हिकिड़ो अक्सीर ऐं तमामु बहितरीन, जंहिंजो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में बि मौजूदु आहे, ज़ैतून जो, त ज़ैतून जो जेको तेल हूंदो आहे उहो अलहमदिल्ला तमामु शाफ़ी आहे अहिड़नि मसइलनि में, हुनजी मालिश न आहे करणी, सिर्फ़ु हुनजो अप्लाई करिणो आहे, लॻाए छॾिणो आहे, अलहमदिल्ला हुन सां काफ़ी सारो वफ़ाको अची वेंदो आहे। लेकिन अंदरूनी तौर ते इहे हिकिड़ो एक्सटर्नली तौर ते कमु कंदो ऐं अंदरूनी तौर ते ज़ाहिर या कंहिं वजह सां ई वजह जे करे ई जेको आहे इहा तकलीफ़ थींदा, त उनजे करे उनजो इलाज बि तमामु ज़रूरी आहे। ऐं हीअ हिकिड़ी फस्ट एड आहे, इहो बि करे इलाज लाइ असांजी क्लिनिक ते ज़रूरु अची ऐं रूबरू ॾेखारे सघो था। जी सर,
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ابا کلال خوش ہو خیر ہو سر
0: دعا الحمدللہ تم بدر سائیں خوش آیو
1: خیر تو بابا میں میڑا
0: میں اور کہ
1: سال جو چھوتے تے میں سورا بوں گا تے تو تو بھول ہی سگا
0: اچھا میں اور کہ بیا گلا ہو
1: بابا میں سن رہا
0: ہوں میں ہڑ کا تا کہ اللہ سین صحت دینو اساں دعاؤں تا اساں گڈ ہیں نا फालिज जो बि इलाज मौजूदु आहे। अलहमदिल्ला डॉक्टर साहिब वटि जेके अधरंगे वारा उहे किरी पिया, उहे घुमिया बि सही, डॉक्टर साहिबु उन्हनि खे घुमायो। चओ था दिलि वारी ॻाल्हि, दिलि वारी बि इनशा तव्हां सिहत तव्हांजी दिलि जी तव्हांजी धड़कन तेज़ थींदी हूंदी, तव्हांखे साह ते तकलीफ़ थींदी हूंदी, डॉक्टर साहिबु उहे बि अलहमदिल्ला सही करे छॾिया। वधीक एफ एम डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो, उमिरि घणी आहे ऐं घणो टाइम थियो आहे अधरंगे खे फालिज खे? 2010 में फालिज थियो आहे।
1: जी बा
0: माना पुराणो
1: आहे।
0: आहे पुराणी बीमारी आहे, पर तव्हां हिकु दफ़ो ज़रूरु डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियो।
1: अंगारे
0: वारे ॾींहुं न अचिजो, बाक़ी अंगारे खां अलावा सभु ॾींहुं मौजूदु बिल्कुलु। अंगारे वारे ॾींहुं मोकल हूंदी आहे, बाक़ी ॾींहुं सभु मौजूदु आहे, सुबुह जो 10 खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं। बिल्कुलु अलहमदिल्ला इलाज अथसि।
2: ट्रीटमेंट मौजूदु आहे, सो अधे खे चवंदासीं बिल्कुलु अचनि। असां वटि हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में पेशंट रखे त असां वटि जेके 3 ॾींहं हूंदा आहिनि, स्पेशली जुमे जो ॾींहुं, छंछरु जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं, उहो चेकअप फीस फ्री हूंदो आहे, दवा मरीज़ खे वठणी पवंदी आहे। बकाया जेको आहे सो ॿिया ॾींहं बि क्लिनिक ते असां मौजूदु हूंदा आहियूं, पर 3 ॾींहं इहे हाईलाइट करणु असांजे लाइ तमामु ज़रूरी हूंदो आहे, त जेके इन में ऐं खोड़ सारा हज़ारे मरीज़ असां वटां पोइ मुस्तफ़ी थींदा आहिनि चेकअप फीस फ्री जे हवाले सां।
0: पहुच माण्हू या जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी सहूलियत आहे फीस जी।
2: जी सर, बकाया ॿिया ॾींहं सूमर जो ॾींहुं, अरबा जो ॾींहुं ऐं खमीस जो ॾींहुं बि असां क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं। अंगारे जो ॾींहुं छुटी हूंदी आहे, क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, हिकिड़ी पेशंट खे ज़हन में ॻाल्हि हुजे। उन खां अलावा असांजो नंबर अवां वटि मौजूदु आहे, जॾहिं बि तव्हां अचो या टोकन नंबर हासिलु करण जे लाइ या का मालूमात हासिलु करण जे लाइ हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट करे ऐं ज़रूरु जेको अची सघो था। जी सर, हिकिड़ो दफ़ो नंबर ॿीहर असांजो ज़रूरु अनाउंस कयो।
0: 03-121-96-851 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे, तव्हां कंहिं बि वक़्तु राबितो करे सघो था। हर अरबा, खमीस, जुमो, छंछरु, आचरु, सूमरु ते डॉक्टर साहिब मौजूदु आहे सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। सामिन, प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजे पुॼाणी जी तरफ़ ई वधे पियो, इन ई ते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो त असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाही।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: थो ईरानी वफ़ा चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे। जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एतराम ज़रूरी आहे। ग्लोबल समूंद फिलोटेला जा समूरा गिरफ़्तार मेंबर इसराइली क़ैद मां आज़ाद थी विया आहिनि। खेनि तुर्कीया मुंतकिल करण जूं तयारियूं। पाकिस्तान गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जी बदसलूकी वारे वाक़े जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त ग्लोबल समूंद फिलोटेला खे रोकण ऐं कारकुननि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। स्पेन ऐं इटलीअ पारां बि इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त फिलोटेला जे कारकुननि जी तसहीक क़बूलण जोगी नाहे।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद।
2: हम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
3: बाबा ये वाला बकरा?
4: बेटा आज ये सिर्फ देखने आए हैं।
3: नहीं नहीं बाबा यही वाला।
4: बेटा अभी पैसे नहीं है।
5: रास
6: सर जी अभी पैसे नहीं तो परेशानी की क्या बात, पेमेंट करें बराहे रास्त।
7: अपने मोबाइल पे बैंक की ऐप या किसी भी
8: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
9: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
10: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
0: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 inch में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3-8569।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: 0302018003।
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न? अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-3992836।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: सुबह

0: परेशान अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।

दोस्तो जरा झोला लगंदा त पेरू तड़ा पचनान कतियू भरंदिया त झोला लगंदा आश कृषि पने महबूब के मुद्द पियो रसे

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्क में जटादार अमन की क्याम लाए दहशतगर्दी खिलाफ जंग कौमी अज़म से जारी रही। वतन जो अमन अमान शहीदन ए गाजिन के कुर्बानन जो नतीजो है। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी लाए मुकदस अमान। नवाज़ियो फील्ड मार्शल चयो तो शहीद ए गाजी कौम जो फख्र आहिन। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी कोशिशन से तरक्की जा रस्ता तय कंदासी। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं तार कारवाइन ते बि वाखाण। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची सां मुलाकात। खिते जी मौजूदा सूरतहाल समेत ट्रैकड़ी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास राग़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाबति तजवीज़नि ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही बि॒यो दौरो आहे। ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका जूं नयूं तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी तजवीज़ुनि जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे। जंग जे ख़ात्मे लाइ हिक ॿिए जो एहतराम तमामु ज़रूरी आहे। ईरानी ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान अमरीका जे पैगाम जो जवाब ॾियण लाइ कमु शुरू करे छॾियो। ॻाल्हियुनि में अमरीकी धमकियुनि खे सभ खां वॾी रुकावट करार ॾिनो वियो। ईरान खे मुआदो थियण ताईं को बि रिलीफ न ॾिनो वेंदो। तेहरान जे जवाब जो कुझु ॾींहं इंतज़ार कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका सां राब्ते में रहंदड़ ईरानी माक़ूल आहिनि। तेहरान डील लाइ बेताब आहे। मुआदो न थियो त ईरान ते ॿीहर हमिलो बि करे सघूं था। ग्लोबल समून फिलोटेला जा समूरा गिरफ़्तार मेंबर इसराइली क़ैद मां आज़ाद थी विया। इसराइल खां तुर्की मुंतकिल। पाकिस्तान गज़ा वासियुनि लाइ खाद खुराक खणी वेंदड़ इंसानी हक़नि जे कारकुननि इसराइल जे बदसलूकी वारे वाक़े जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त ग्लोबल समून फिलोटेला खे रोकणु

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी

0: एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 03 85 569

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151। खुशखबरी
1: हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5569-0300-33-8569।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302-01-8003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सामीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।